0: उजाला रेडियो डे अबे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है, तू बता दे सबको इसे बताते हैं। ऑटो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके हैं उजाला रेडियो, और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो।
1: क्या साजन को सजनी पसंद नहीं, फिर क्यों ये दरवाजा बंद नहीं?
2: करू कौन जतन जल्दी हो मिलन, करू कौन जतन जल्दी हो मिलन, सुनते हो सजन छननन छननन छननन, छननन।

अज्ञान के अंधकार से मुक्ति देने वाला परम पिता परमेश्वर ही है। वही जगत का पालनहार है। आओ निर्मल मन से शरणागत होकर प्रार्थना करें, हे प्रभु हम भटके हुए प्राणियों को राह दिखाओ।

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवराजे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवराजे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

इस संसार में सभी मुसाफिर हैं, आते हैं और जब ईश्वर का बुलावा आता है तो चल देते हैं। आज जिसका शोक कर रहे हैं उसे तो नया जीवन भी मिल गया होगा। यही रीत है इस संसार की।

आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर मार हॉनेट यूरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नार info@ujala.net info@ujala.net

जिन्हें बेचैन होके हम तुम से मिले। फिल्म कसूर अलका याग्निक एंड उदित नारायण इन दोनों से आप सुने और ये उजाला रेडियो है।

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november. Koop je kaarten via meervaart.nl. Ujala Radio, देश भर में तू जान है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नहीं लॉन्ग तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए

मुझे नहीं पूछनी तुमसे बीती बातें, मुकेश जी की आवाज और फिल्म अनजान राहें से। गीत को आप सुने और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो का प्रोग्राम। को इन्फॉर्मेशन के लिए आप देखें वेबसाइट पर उजाला.nl।

के मत जाना मोहम्मद रफी साहब के साथ आप सुने आशा भोसले की आवाज़ और बहुत पुरानी फिल्म 1958 खतीन अख्तन फैफ्तख के फिल्म फागुन से निकाला हुआ गीत। और अब आशा जी के साथ मुकेश जी को आप सुनेंगे।

दोनों मिलके कागज के दिल पे चिट्ठी लिखेंगे और जवाब आएगा, जरूर आएगा। मुकेश अंदाशा जी, फिल्म का नाम तुम्हारी कसम स्टेशन, युवाड़ो जाला रेडियो।

0: फिल्म का नाम पूरब और पश्चिम, गीत के गाने वाले लता जी, महेंद्र कपूर और मनहर उदास। सुनने वालों, अब उजाला रेडियो का प्रोग्राम में चलिए, पेश है एक बैठक गाना हरिदत्त जयराम की आवाज में, सुनिए।
1: मनुष्य के जन्म पायल है, मनुष्य रहा इंसान, एक दूसर के धन दौलत हड़प के बस गए मर, इस जन्म में देखा गधा बन के भोगे भैया हाफिज।
2: अच्छा भैया जयराम, तो जब तू मरिए तब तू कौन सी हो?
1: देख भैया हाफिज, जो हम भी कोई के धन दौलत हड़प के खाए के मर जा, और जो मरब तैसे ही गधा बन के हम भी भोग अपन करनी।

live vanuit de Hoofdstad. उजाला रेडियो देश भर में तू जान है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलम तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए Ujalalare, Diwali Festival of Lights, zondag 1 november. Eet waar ik daar in november kom, Meervaarttheater mee. Jabberjus Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Maus Milbroy, Indro Neil Roy, Ravinder Singh, Biddy. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuru Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad, Jabberjus Concert. Meervaart met Honeywalle Heer. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per aap ticket gedilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november. Bestaat 40 jaar, niet 10.

0: सुनने आए।
1: अर्ज करना अपनी बात कहना भी है और सामने वाले को सुनने की जगह देना भी। किसी बातचीत की कितनी सुंदर शुरुआत हो सकती है। कभी बात लंबी नहीं होती, बस उसे कहने का ढंग याद रह जाता है।

मुझे सुना दिल। छोटा सा नाम लेकिन रोज की बातचीत में कितने काम आता है, पसंद बताने में भी, अपनापन जताने में भी। अब फिल्म कॉकटेल 2 से सुनिए जब तलक।

अगली मुलाकात की उम्मीद पहले से मौजूद होती है। दरवाजे तक छोड़ने आए किसी अपने की मुस्कान में वह बात बिना कहे भी मिल जाती है। इसी परिचित ख्याल को सामने रखता एक नाम, फिर मिलेंगे हम।

बात में एक अलग तसल्ली है। जैसे बातचीत खत्म नहीं हुई, बस थोड़ी देर के लिए ठहरी है। समर जाफरी के साथ यह संगीत का पड़ाव था।

ये नाम पढ़ते ही तारीफ करने का वह सहज अंदाज याद आता है जब बड़ी बात कहने के लिए बड़े शब्द नहीं चाहिए। अब सुनिए हम।

एक छोटा सा शब्द कई लोगों को एक साथ जगह दे सकता है। उसमें घर की मेज के आसपास बैठे लोग भी आ सकते हैं और दूर रहने वाले अपने भी। अकेले अपनी बात कहने से अलग साथ की बात कहने में एक गर्माहट है।

अभी आपने सुना शुभ का फेल फॉर यू। आगे के गीत का नाम अपने आप में एक चमक लेकर आता है, सुनिए रंगीन।

आते ही कितनी छोटी चीजें याद आ जाती हैं। अलमारी में रखा पसंदीदा दुपट्टा, किसी पुरानी तस्वीर की पृष्ठभूमि या मेज पर रखा एक फूल, हर रंग की अपनी याद हो सकती है। उस ख्याल को बस यहीं रहने देते हैं, बिना उसे किसी बड़ी बात में बदले।

दिस इज उजाला रेडियो। संगीत का यह सफर जारी है। अभी आपके साथ था दर्शन रावल का माहिए जिन्ना सोहना। अगले गीत के लिए अब जगह बनाते हैं, सुनिए मजबूर।

छोटा जिक्र बातचीत का रंग बदल देता है। कभी किसी का छोटा सा जवाब उसकी पूरी परिस्थिति नहीं बता पाता। उस शब्द में जो अनकहा रह जाता है वह भी ध्यान खींचता है। नाम से उठा यह ख्याल कुछ देर ठहरने लायक है।

0: बम भोले भोले बम भोले भोले बम भोले।
1: आपने सुना पार्वती साधु तिवारी के साथ। अब अगले गीत की ओर बढ़ते हैं, सुनिए हस हस।

0: तेरे प्यार दी।
1: हंसी की याद अक्सर किसी चेहरे के साथ लौटती है, कभी पुरानी तस्वीर में, कभी किसी परिचित की बिल्कुल साधारण बात में। ऐसी यादों का अपना हल्कापन होता है, उन्हें समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ती।

तेरे बिना ना गुजाराए, इस नाम में किसी की कमी का सीधा एहसास है। कभी साथ की अहमियत उसकी गैर मौजूदगी में साफ दिखाई देती है, जैसे रोज की बातचीत का एक हिस्सा अचानक खाली रह जाए।

बिनकोर ट्रावर तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, सुन वालों तो डीजे आप फरमाइश अब उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो अब उजाला रेडियो दिस खाई आई बिनकोर ट्रावर तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाला है नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो ईमेल info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो अब उजाला रेडियो

0: मुझे कुछ कहा था, कभी कुछ कहा था ना प्यार में, प्यार में जो तू बलोव करिए प्रोबेट अजाल ना तो कौम है, जो ची तू वादा करिए वादा से कर निभाइए। उजाला रेडियो ये है सुनो, और उजाला रेडियो के जरिए हम चलते हैं दिल है सरनामे द साउंड फ्रॉम सुरीनाम।
1: पीर होकर दुश्मनों से जड़ने से मरना।
0: Een hele goede middag dames en heren, sunt wallo. Welkom bij deze uitgebreide nieuwsuitzending van vandaag. Wij brengen u de belangrijkste updates rechtstreeks uit Suriname. Ja, zometeen gaan we naar Suriname. We kijken naar de politieke koers van Paramaribo, juridische spraakmakende zaken, de onrust in de onderwijssector en natuurlijk naar de prestaties van onze nationale selectie Nacho.

यू आर उजाला रेडियो, ये है सुनो लो। और उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हम आपको सुनाने को जा रहे हैं। कभी कभी तू लोग सोच लेगा कि के तू मांगे है, के तू मांगे है, के तू मांगे है। सोम्स हम लोग कोनो के मांगिला, कोनो के हम लोग मांगिला, बाकी ना मिले तो

मैंने तुझे मांगा है तुझे पाया है। नया जिंदगी में कभी कभी ऐसे चीजवा हो है कि तू कोनो के मंगे बाकी बहुत मुहती करिए चाहे जितना मुहती करिए ना मिले हैगा। एंड कभी कभी हम लोग अमन रलाची में बोला कि ए मेरे राजा।

कि गनवा में है क्या कुछ बात है सुनो। गनवा जो सुनिए तो तू फलिफ्त हो जाइए। ढेर जन है जो अपन राजा के खोज है अबे राजा ना मिले लगे नया ब्लैक वे रोड ई मौसम में राजा मिल सकेगा या तो रानी भी मिल सकेगा। मदाम कुछ वेल्फ और ओपस्तान है हम देखिए vrijdag we hebben mensen natuurlijk genoten van onze koffie chai middagshow met Arend natuurlijk. En Roy die ligt gewoon dubbel elke keer. Uw cabina belke heel jalla keer. Maar uw ghanten zoenen hega ujala, maar hij ligt er wel dubbel van. Aur hum log bol rahe ki sukke ki scorpion ke kaise bolo jaye hindustani mein. Ja, ik wist het zelf niet hoor, maar bichi

ओ तेरे संग यारा, अभी आपने उजाला रेडियो के जरिए ये शानदार से नगमा सुने हैं एंड नतुलक गनवा तुल मोइसे सुन ले तो आई हैव ऑलस फॉर यू ओपगेवन ऑलस अचरगेलाते हम तोर साथ मायले खनी रहे तोर साथ खनी हम सब कुछ छोड़ छाड़ के हम तोर साथ मायला रहे उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हम आपको इस बार नगमा सुनाने को जा रहे हैं यूली हैव दैट ऑल बेच गहोर्ड टाइडेंस तेरे संग यारा या कभी कभी हो जाए तो En op deze zondag, Rotidag, gaan we luisteren nu naar Mighty Mukesh. Kabi kabi ham bolila ki jo toke pasand hai ga, wat jij leuk vindt, vind ik ook leuk. Ohi baat karab ham.

0: जोन चीज तोके पसंद हैगा, जोन बात तोके पसंद हैगा, वही बात हम मायल करें। माइटी मुकेश के आवाज में आपने सुने हैं।
1: अगर रात हो रात है,
0: या अब वही बात मायल करें जो तू मायल करें। You are Ujala Radio, यहीं सुनो लो। नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं एक आज दिस शो निम्स राय तो दमिया सोचे कि हम फलिफ्ट हो गए। नहीं, एक बेनी फलिफ्ट, एक बेनी फलिफ्ट। मैं मिशन पे यहीं वाल फलिफ्ट तो के मोहल्ले को सही गनवन तो तू सुन। और ये है संजय जोधा, जोमदाग 1 नवंबर इन द मेरवाट उजालास दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स संजय जोधा। और तू करतो ना किले बाटे तो किले फन 15 नो एंड गेन स्टासपास कोटिंग है या दिस तू ना ओगोरी की स्टासपास कोटिंग मिली ना IBAN hega, gemeente ke paisa na hega. Dus je moet maar zelf kopen. En die kaarten zijn niet duur hoor, nee, 15, 20 euro. En ook paisa die kaart jega, als je rekent dat je gratis drankje krijgt, toe gratis parkeerkassen krijgen, gratis garderobe, gratis toilet. Paisa die kaart jega, oma mensen. 15 euro op een mooie zondagmiddag. Vanaf 2:30 hebben we fakkeloptocht en daarna hebben we concert met Sanjay Jodha. Satyam Matadina Suriname, Indru Neel Roy en Maus Muberoy, en Ravinder Singh, Bedi met Avishkar Orchestra. En nu Sanjay Jodha.

गया प्यार में हम लोग कौन ना कुछ कुछ कौन ची हम लोग ना बोल दे रहा है कौन ची हम लोग ना बोल दे रहा है एंड वी डू फन ऑल ऑफ नहवत कोनो के दिल जीते खातिन हम लोग सब कुछ कर दिला फॉर ऑल द मना यू डू ऑल ऑफ फॉर है झूठी फूटी जो ची है हम लोग बोल दे रहा अब गनवा ई गनवा सुन कि हम तो दिल में आ गए लेगा तोर पूजा करबे तोर साथ रहबे जिंदगी तोर साथ हम बिताबे सब कुछ तोर खातिर हम करबे ई गनवा सुनिए

देख लो तो एटाइंडलक आ गए एक दूजे में, एक दूजे दिल में आ गए है एटाइंडलक, बहुत देर लगल एयर्स बोले फान, हम बोले एयर्स फान सुन अब तेरे दिल में हम आ गए, तो बोले फिर ना ये दिल हमार हैगा, ये हमार दिल हैगा, तेरा घर नहीं है तेरा और जगह खाली हैगा। देख ले तो यू आर उजाला रेडियो, ये है सुनने वाला और उजाला रेडियो का प्रोग्राम। अभी आप बैठ गाना हंगामा आप सुन लेना और भी पेश किया जाएगा दोर एनिग एक्ट नेचुरली सुभाष सुगमिन के जरिए ये प्रोग्राम पेश किया जाएगा फनफ थ्री यूर बैठ गाना हंगामा। और रोटी दाग आज है, रोटी दाग सोमदाग इस रोटी दाग, जिस आज दत नीत विस्त तो तुम डायरेक्ट डायरेक्ट आज शुरू कर दे रोटी बना के, जिना जाने है बनावे प्रोबेर करवाओ ना ये कहो किने। हम मैं ना चाहता बतिया बोले कि दी यंग जेनरेशंस कुनन गेन रोटी मेकन होर, या द यंग जेनरेशंस हैं द मेजेस फॉरऑल द मेजेस, ना द जंगस मूट ओक लेरन होर ओम रोटी टू मेकन, वांट आई कैन ओक रोटी मेकन। Jongens en meisjes, ja, probeer je ook roti te maken. Leer van je papa of mama om roti te maken. In plaats van te gaan pieren waaien hier en daar. Hè? Nou, roti benauw. En dit is Satyam Matadin. Ook aanwezig. Surinamse aangehegen. Satyam Matadin, Nederland mee. En 1 november meervaart mee met Avishkar Orchestra. Satyam Matadin.

गनवातुलों सुन ले तो फन अब्दिल पे अब्दिल हमारा आगे है तो रूप गनवा पे रहा कि ये दिल है मेरा, ये दिल है मेरा, तेरा घर नहीं तेरा, तेरा घर नहीं तेरा, जगह खाली नहीं हैगा। Maar goed, we gaan even nu iemand feliciteren, Aartje. We gaan even naar Rotterdam. Rotterdam mee, Rehe. En de jarige daar is Dikhajai. Samdi Bhai, hè, Sriman Glenn Gunpat ki Aartje verjaardag heeft van harte gefeliciteerd. Namens Samdi Bhai Anand Chandrika Singh en Samdhin Shanta Chandrika Singh. Van harte met u verjaardag. इनकी तरफ से आपको बधाइयां शुभकामना पेश किया जा रहा है और नतुलक नामस सूरज एंड सपना एंड एखनोत जैन की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाइयां शुभकामना पेश किया जा रहा है फॉर हार्ट मैथ्यू फरियादा श्रीमान ग्लेन गणपत हमदनी कैबरीज के पहले मैं बहुत यंग बाटी तू फॉर हार्ट गेफेलिसिटेट मोइस्ट मनाई है आज फरियारी और तू जाने है आज है रोटी दाग तो होप दैट यू फील रोटीज गात ईटन वंदाग मोई से फरियारी आज मनाई है नॉगमाल्स फन हार्ट गेफेलिसिटेट मैथ यू फरियादा श्रीमान ग्लेन गणपत Die is vandaag jarig. Van harte namens Soeres Sapna. Namens uw echtgenote Aapke Dharmpatni Jane Ketrafse. Namens Anand en namens Shanta. En jitne pariwaar hai sabhi Ketrafse Aapke badhaiya aur shubhkamna pesh kiya ja raha hai.

डे टू यू. अभी आपने सुने सुन वालों और भी उजाला रेडियो के जरिए पेश किया गया है. एंड इन बिजोंदर आज है फरियारी श्रीमान ग्लेन गणपत के आज फरियारी है. लाती फिर मैंने फंदा और रोटी बनाइए मत, हम लोग आला रोटी खाए. यू आर उजाला रेडियो, ये है सुन वालों और उजाला रेडियो के जरिए हम आपको ये नहमा सुनाने गुजार रहे हैं. अच्छा सुन, जब तुके एगो फ्रेंड या फ्रेंडिन हैगा तू माए कदो दे तो वेली यदि पर्सोन फरवेन है दन परफ्यूम किनिए ऑफ की तो सोना के चीज किनिए रिंग ऑफ एन केटिंग ऑफ वेट एक फिल कपड़ा वगैरह वगैरह वगैरह. मैं ये कान ओक वातम लूं गेवो. En dit is uit de film Sette Pesetta. Amita Bachchan, Sette Pesetta mee. Hema Malini ke gaat in watermeloen laila.

जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे कोई हम सफर, कोई ना कोई तो मिलेगा है? दिल ना चाहिए हारे के। सुनो वालों, इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं। एक बैंड मॉर्गन वे मेट कॉफी चाय मेरा शो मेट आनंद चंदिका सिंह। Ik wens jullie allemaal een hele mooie, fijne zondag. Mooiste zondag bij je. Pyar mahabbat ke saath. En zometeen, Subhan Sri Govind. Mooiste hier.

कुदरत का करिश्मा एक दूसरे से है मिलना, दुनिया की जरसमे पर किस्मत को है आसमाना, ये प्रेम का जहां है हर किश्त ना भूल जाना, आपस के मोहब्बत ये धर्म है सिखाता। हमारे सभी सुनने वालों को हरि को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम आज इतवार 4 तारीख अक्टूबर का प्रोग्राम आप लोग सुनने को जा रहे हैं।

हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी हो, आप एक हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबादी अर्ज किए जाते हैं। जो कोई बीमार ये तो लाचार है तो उनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप एक ताकत और तंदुरुस्ती के लिए। करीबन 12 मिनट व्यतीत हो चुका है 3:12 खुद मेरा हलमाओ, आप सभी को हम बहुत ही प्यार से दुलार से स्वागत करता हूँ। मैं हूँ सुभाष और जहां तक मेरी आवाज पहुंची वहां तक हम आप सभी को प्यार से दुलार से स्वागतम, वेलकम, खुद मेरा हलमाओ। चाहे जहां पर आप लोग हमें सुनते होंगे सुनते ही जाइए शाम में 5 बजे तक, बस इसका प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा। अगर आप लोग हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहेंगे तो वो हो सकता है व्हाट्सएप के जरिए, और उजाला रेडियो का व्हाट्सएप का फोन का नंबर 9203630008 पर, 9203630008 पर। और हम सोचे लो कि आप लोग मौज से बांटे और शाम में 5 बजे तक आप लोग हमारे साथ को देने वाले हैं। हमारे प्यारे सुनने वालों, चलिए पहला बैठक गाना जो प्रोग्राम में हम आप लोग को सुनाने वाले हैं, और इस बैठक गाना को गाने वाले होंगे स्वर्गीय रामदेव चैतू जी के आवाज में, आप लोग सुनेंगे और इस तरह से

शाबाश शाबाश, हाय मुझे लूट लिया सैया तेरे प्यार में। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, स्वर्गीय रामदेव चैतू जी। हमसे पहले प्रोग्राम को बनाए लोहित महावीर ए भाई लोहित दंकवेल। और प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा जो आप लोग सुन रहे हैं। और चलिए अब की बार जो बैठक गाना प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो दनहाँ शहर में सकेफ नगर में, जहां पर इस वक्त लक्ष्मण श्रीमान लक्ष्मण प्रोग्राम को सुन रहे। तो चलिए गाना आपके नाम हम कर देते हैं। और इस गाना को गाने वाले होंगे स्वर्गीय पंडित रामचंद्र बंसीधर। प्रोग्राम में एक ठुमरी आप लोग सुनेंगे।

0: De persoon die deze telefoonhouder heeft bedacht is echt slim. Het maakt niet uit wat voor smartphone je gebruikt, zodra...
1: ये वो जाना रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं और अभी गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने और वो भी खासकर के पंडित रामचंद्र बंसीधर जी के आवास में एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम हमारे प्यारे सुनने वालों अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो गाने वाले होंगे स्वर्गीय स्वर्गीय सनातन जी के आवास में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे और अगर आप लोग कोई भी गाना जो बैठे गाना सुनना चाहेंगे तो हमारा व्हाट्सएप का फोन का नंबर है 9 3 9 9 पर आप लोग हमें ऐप कर सके तो हम आपके लिए जरूर से बैठक गाना हम आपके लिए घुमा देंगे। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग हम आप लोग से बता चुके हैं स्वर्गीय सनातन जी के आवास में गाना जो आप लोग सुनेंगे और ये गाना पेश है देखा जय अलमेरे में भाई मनोज मुंगार प्रोग्राम को बैठकर सुनते भाई मनोज ये गाना आपके नाम

शाबाश शाबाश पिया चलो ना नगरिया हमारी। उस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने एंड वो भी स्वर्गीय सनातन जी के आवास में। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो गाने वाले होंगे श्रीमान सत्यनंद रेखा जी, और इस गाना को मांग करने वाले हम सर हम सहित तो उसमें भाई देव लक्ष्मण प्रोग्राम को बैठ कर सुने। तो चलिए भाई देव लक्ष्मण ये गाना तुम्हारे नाम कर देता हूँ, हम सर हम सहित तो उसमें आप बैठ करके सुने हैं। वाओ।

वेल शाबाश शाबाश बोले पल पल बीती जाती उमरिया प्यारा प्यारा बचपन का। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने खास करके श्रीमान सत्यानंद रेखा जी आई बोई वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा यू आर उजाला रेडियो पर। और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए तिल बुरुक शहर में जहां पर इस वक्त सुनीता भी प्रोग्राम को प्यार के साथ गाना को बैठ करके सुने उजाला रेडियो। तो चलिए गाना

वेल, क्या बात है यार, गोरी रतिया के निंदिया चुराई के, कहां ले जाइयो हमको उड़ाई के। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, खास करके द किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह सिवना जी, होरन चर में माला भी प्रोग्राम को बैठ के सुने, तो माला इस गाना को मांग किया है।

0: बेटी और खान सर के देपा जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने युवा उजाला रेडियो का प्रोग्राम हमारे प्यारे सुनने वालों, मैं हूं सुभाष, आप हर को शुभ दिन। और मेरे शहर में माइक बुद्धू जी प्रोग्राम को भी बढ़कर सुने, कहां पर से घर आए ले भाई जी, वेलकम। और चलिए गाना तुम्हारे नाम,
1: गली निकरी के बाजार हो
0: आया या।

0: शाबाश शाबाश यार, गैली निकेरी के बाजार एन गिर गैली झुमका। श्रीमान सत्यनंद रेखा जी तो चलिए फैंस पोल्डर में एमईजी प्रोग्राम को बैठकर सुने ये गाना तुम्हारे नाम।
1: जंगली की खरीद अगर सोचो तो हम हैं दौलत के घर, पैसा जहान में तो नुकसान नगीन है, पैसा नहीं तो आदमी कौड़ी के तीन है। ठनठनाटन पे सारी दुनिया डोले रे।

राजा आ पैसागी के बल्ले से बाबू बना फिरे तू राजा, पैसागी के झलक दिखा के काहे उनसे आजा। हाथ पकड़ के सैया जब तेरा मुखड़ा खोले हो

शाबाश शौरी शरण से स्वर्गीय रामदेव चैतू जी के वास में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, तू ना डोले यार बोले तेरा पैसा डोले। वेल कितना पैसा हो, तू ना डोले भैया तेरा पैसा डोले यार, तेरा पैसा तो चाहिए डोले के ना। चलिए अब की बार दीमन शहर में फौसिया प्रोग्राम को बैठकर सुने तो ये गाना तुम्हारे नाम फौसिया।

आई बो ये तोरे गालों पे गोधनवा बोले जुल्म करे ना। आयुष्मान से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने एंड वो भी खास करके आनंद भजन जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं, हमारे प्यारे सुनने वालों, इतवार का शाम का प्रोग्राम वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा। इट इज सोंडाग 4 अक्टूबर। आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन। और अगर आप लोग बैठ करके भोजन करते होंगे, स्वादी से भोजन कीजिए। अगर आप घर के काम सफाई करते होंगे तो मोई से अपन घर सफा करिए, चाहे जो काम करते होंगे मोई से स्त्री करिए। वन में कपड़ा त्रिक करे को प्रॉब्लम लाइन वन बैठाओ, बड़ा मुलक रही यार। अब हम और हमारे लाइन वन सब सोचा चाहे रह के। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम। चलिए अब की बार बैठक गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, तो इस बैठक गाना को गाने वाले होंगे शांति शिव नंदन के आवाज में। और ये गाना पेश है अम सलाम आकर में हैं गोपी के लिए।

0: दिल।
1: वेल शाबाश शाबाश। और इस तरह से देखा जाए शांति सिंधन की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, और हम आप लोग से बता रहे थे कि इतवार के मेज़ घर पर कपड़ा तिरकी हो गए हैं। एंड देखा जाए इसके फिर शहर में सानू जी भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने हैं, तो ये गाना तुम्हारे नाम

शाबाश शाबाश हरी हरी गंगा। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने और देखा जाए हरलम शहर में सीता भी प्रोग्राम को बैठकर सुने, तो ये गाना तुम्हारे नाम स्वर्गीय द्रौपदी जी। या बे आई बोल

0: शाबाश और सरों से खास करके गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने स्वर्गीय द्रौपदी जी के आवास में एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम। हम आप लोग से बता चुके कि इतवार के घर घर घर में काम हुए हैं एंड चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे सानू गनवा ना सुने रहा तो चलिए गाना तुम्हारे लिए
1: सुते ना देवे, सुते ना देवे।
0: आई बॉय

Yabel Sutena Devi Hami Rat Abhar Sutena Devi Ausra se the King of Bad Gana Khash karke aap log sune aur wo bhi khash karke Devendra Singh Sivna ji ke awaaz mein aur Yuvar Ujala Radio ka program jo aap log sun rahe hamare pyare sunne walon अब की बार गाना जो प्रोग्राम में हम आप लोग को सुनाने वाले हैं और इस गाना को गाने वाले हैं देखा जाए देवा जी और इस गाना को मांग करने वाले दनहांग शहर में राजेन भी बैठ करके सुने तो भाई राजेन चलिए गाना तुम्हारे नाम कर देता हूँ

शाबाश शाबाश। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने देबा जी के आवाज में, एंड यू आर उचाला रेडियो। और चलिए फियान शहर में श्रीमान राम सुख भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने, युवा उजाला रेडियो वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा।

वेल शाबाश शाबाश। इस तरह से संदीप बदलू के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए सत्या और जॉनी भी प्रोग्राम को बैठ के सुने तो ये

जान से प्यास से पंछी। और इस गाना को गाने वाले खास कर कृष्ण छेदी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुनें। और रखे जाए अमसलम सही तो उसमें रॉबी रोजन भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने हैं। और भाई जान ये गाना तुम्हारे नाम।

शाबाश पारी करो रे। और इस तरह से कृष्ण चेदी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, इट इज बैना 4:45 या वेल पौने पांच का वक्त एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम, वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग को सुनाने वाले हमारे प्यारे सुनने वालों,

0: आपस में देखा तो गली मुस्काई, वेल यार भैया ता की लड़की, द यंग टाइगर ऑफ बैड गना विशाल हीरा के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम है, कोई भूखा ना रह जाए तो कि जब हाथ गोड़ तोड़ चले तब अरे यार बाका भात भूजल भात या तो अंडा बाका कर ले या तो कुछ और बना ले। वीकेंड है, वीकेंड ना बा इतवार बा बे ना
1: कोदाय पे कोदना
0: मोरखवेल अलमल वर्कन यावेल
1: अब ही बाली मोरी उमरिया हमरे कोदाय पे कोदना
0: हम सरम सहित उसमें हमारी मामी खैरदा जी भी प्रगा

0: शबाश द किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह सेवना जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने हमारे प्यारे सुने वो लोग घड़ी तरफ देखा जाए तो करीबन 3 मिनट बाकी रहा 5 बजने में और एक आखिरी गाना हम घुमाने वाले हैं खासर के सीता आयत हार्लेम। चलिए सीता
1: बता दे
0: एक शुभ दिन तुम्हारे लिए
1: बता दे तुझे जाना
0: और ये गाना भी पेश है सभी सुनने वालों के लिए जो हमारे साथ दिए सभी बैठक गाना का चाहने वालों के लिए जो भी आप बैठक गाना से प्यार करते हैं।

और इतना भी हम जान लें कि त्वे यूरिचस से बैठ गना इस तकोर्त मैं यहाँ आप लोग मोई से रहिए अपना इतवार का शाम और इतवार का राती मोई से बिताइयो मोई से खाइयो मोई से पियो मोई से रहिए वही बतिया बोल लो जो भी करिए प्यार से करिए वरना ना करिए यार कोई से प्यार है बोल देना कि हमें तुम्हें प्यार है या वेल बाय बाय स्वाय स्वाय आप सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार राम राम नमस्ते एंड आदाब खिदमत की आपका दोस्त सुभाष शिवगोविंद

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा

0: तुझे कुछ कहा था, कभी कुछ कहा था ना प्यार में, प्यार में जो तू बिलीव करिए प्रोबेट अजल ना तो कौम है, जो ची तू वादा करिए वादा से कर निभाइए। उजाला रेडियो ये है सुनो, और उजाला रेडियो के जरिए हम चलते हैं दिल है सरनामी द साउंड फ्रॉम सुरीनाम।
1: तीर हो कर दुश्मनों से जड़ने से मरना।
0: Een hele goede middag dames en heren, sunt wallo. Welkom bij deze uitgebreide nieuwsuitzending van vandaag. Wij brengen u de belangrijkste updates rechtstreeks uit Suriname.

और उजाला रेडियो, ये है सुनो लो। और उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हम ये हम आपको सुनाने को जा रहे हैं। कभी कभी तू लोग सोचे तू मांगे है के तू मांगे है गा के तू मांगे है गा

मैंने तुझे मांगा है तुझे पाया है। नया जिंदगी में कभी कभी ऐसे चीजवा हो है कि तू कौन के मंगे, बाकी बहुत मूर्ति करिए, चाहे जितना मूर्ति करिए ना मिले हैगा। एंड कभी कभी हम लोग अमन रलाची में बोला कि ए मेरे राजा।

0: आशा भोसले के ढेर रोमांटिक सॉन्ग्स है या सुन वालों, आशा भोसले के एक कॉन्सर्ट होना चाहिए है? एक हम उजाला के अधीन से बतियाबे हैं, एक हम में मेंस फॉर उजाला प्रांते डी ऑर्गेनाइजेशन दस एन कॉन्सर्ट उस सब की चाहेंगा लावे के आशा भोसले के गाने के ऊपर वह थे जो तो मोये नंबर्स आठ खिलाद उजाला रेडियो ये हैं सुन वालों और उजाला रेडियो के जरिए एक गाना हम आपको सुनाने को जा रहे हैं
1: तू रात दीवानी
0: गाना जो तू मंगिए खोजे एन बॉलीवुड नंबर waarin je dus schrijft van ego gana maila jema hega ave ik heb alles voor jou opgegeven alles achtergelaten voor jou to kon ganwa pas hega bala soch i ganwa ik heb alles voor jou opgegeven alles achtergelaten voor jou ham sab kuch chhod deli tor khatin

तेरे संग यारा, अभी आपने उजाला रेडियो के जरिए ये शानदार से नगमा सुने हैं एंड नतुलक गनवा तुलो मोइस सुने तो आई हैव ऑलवेज फॉर यू अपगेवन ऑलवेज अचरगेलाते हम तोर साथ मायले खनी रहे तोर साथ खनी हम सब कुछ छोड़ छाड़ के हम तोर साथ मायला रहे उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हम आपको इस बार नगमा सुनाने को जा रहे हैं यूली हैव दैट ऑल बेच गोट टाइम्स तेरे संग यारा या कभी कभी हो जाए तो En op deze zondag, Rotidag, gaan we luisteren nu naar Mighty Mukesh. कभी कभी हम बोलेगा कि जो जो तुके पसंद हैगा, वट वट यार लोग फिंड, फिंड को क्लर्क, वही बात कर हम.

0: Ja, hij is er op zondag 1 november in de Meervaart. Sanjay Jodhar met Avishkar Orchestra.
1: रहे ना रहे हम
0: अपन कटवा वक्त पे खरीद लेना फनाफ 15 euro en meervaart mee programma शुरू होगा vanaf 2:30 zondag 1 november Diwali Festival of Lights en dan nu हम आपको नगमा सुनाने को जा रहे हैं नाजिया एंड सोहेब हसन के आवाज में आई फिल्म स्टार और ये गाना पेश किया जा रहा है सांद्रा सांद्रा आउट रोटरडम हेलो सांद्रा स्पेशल ये गाना तू मांगेगा जाना जिंदगी से ना जाना
1: लुटना जाए
0: अहलक ये वर्सी हमें ना मोई लगे है या सुनत मार द गाओ वेल नार अन वर्सी लुइसरे व्हाट व्हाट व्हाट व्हाट बेटर क्लिंक्ट है जाना जिंदगी से ना जाना सांद्रा के तो जिंदगी से जाया हैगा ओके रोक ले जाने ना दे जाना जिंदगी से ना जाना दोस्तों जिंदगी में कोनो आयल हैगा एंड तो के चाह हैगा ओके ना जान दिए पकड़ के धल्ले रहो

या प्यार में हम लोग कौन ना कौन सी हम लोग ना बोल दे रहा है, कौन सी हम लोग ना बोल रहा है। एंड वी डू फॉर ऑल ऑफ अस नहवत कोनो के दिल जीते खातिन हम लोग सब कुछ कर दिला है। फॉर ऑल द मनर यू ऑल ऑफ अस फॉर है झूठी फूटी जो चीज है हम लोग बोल देला। अब गनवा ये गनवा सुन कि हम तो दिल में आ गए लेगा तोर पूजा करबे तोर साथ रहबे जिंदगी तोर साथ हम बिताबे सब कुछ तोर साथ हम करबे। ये गनवा सुनिए

देख लो तो एटाइंडलक आ गए एक दूजे में, एक दूजे दिल में आ गए एटाइंडलक, बहुत देर लगल एयर्स बोले फान, हम बोली एयर्स फान सुन अब तेरे दिल में हम आ गए, तो बोले फिर ना ये दिल हमार है गा, ये हमार दिल है गा, तेरा घर नहीं है तेरा और जगह खाली है गा। देख ले तो यू आर उजाला रेडियो, ये है सुनने वाला और उजाला रेडियो का प्रोग्राम। अभी आप बैठ गाना हंगामा आप सुन लेना और भी पेश किया जाएगा दोर एनिग एक्ट नेचुरली सुभाष सुगुमिन के जरिए ये प्रोग्राम पेश किया जाएगा फनफ थ्री यूर बैठ गाना हंगामा। और रोटी दाग आज है रोटी दाग, सोमदाग इस रोटी दाग, तो आज दत नीत विस्ट तो तुम डायरेक्ट डायरेक्ट आज शुरू कर दे रोटी बना के, जिना जाने है बनावे प्रोबेर कर वेल ना जी कहो कि हम मैं ना चाहता बतिया बोले कि दी यंग जनरेशंस कुनन गेन रोटी मेकन हुर या द यंग जनरेशंस हैं द मेजेस फॉरऑल द मेजेस ना द यंग्स मूट ओक लेरन हुर ओम रोटी टू मेकन या वंट आई कैन ओक रोटी मेकन jongens en meisjes, ja, probeer je ook roti te maken. Leer van je papa of mama om roti te maken. In plaats van te gaan pieren waaien hier en daar. Hè? Nou, roti benauw. En dit is Satyam Matadin. Ook aanwezig. Surinamse eigenheden. Satyam Matadin, Nederland mee. En 1 november meervaart mee met Avishkar Orchestra. Satyam Matadin.

Yeah. Ganuatulon sunlere tofan Abdil pe Abdil hamar aage hai toru pe. Ganua pe raha ki ye dil hai mera, tera ghar nahi tera, tera ghar nahi tera, jagah khali nahi hai ga. Maar goed, we gaan even nu iemand feliciteren, Aartje. We gaan even naar Rotterdam. Rotterdam mee, Rehe. En de jarige daar is Dick Hajai. Samdi Bhai, Sriman Glenn Ganpat ki Aartje verjaardag heeft van harte gefeliciteerd. Namens Samdi Bhai Anand Chandrika Singh en Samdin Shanta Chandrika Singh. Van harte met u verjaardag. इनकी तरफ से आपको बधाइयां शुभकामना पेश किया जा रहा है और नेचुरली नामस सूरज एंड सपना एंड एखनोत जैन की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाइयां शुभकामना पेश किया जा रहा है फॉर हार्ट मैथ्यू फरियादा श्रीमान ग्लेन गणपत हमदानी कैबरीज के पहले मैं बहुत यंग बाटी तू फॉर हार्ट गेफेलिसिटेट मोय से मनाई है आज फरियारी और तू जाने आज है रोटी दाग तो आई होप दैट यू फील रोटी साथ ईद वंदा मोय से फरियारी आज मनाई है Nogmaals van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Sriman Glenn Gunpat, die is vandaag jarig. Van harte namens Suraj Sapna, namens uw echtgenote Aapke Dharmpatni Jane Ketrafse, namens Anand en namens Shanta. En jitne pariwaar hai, sabhi ki taraf se aapko badhaiyan aur shubhkamnaen pesh kiya ja raha hai.

बर्थडे टू यू, अभी आपने सुने सुनवालों और भी उजाला रेडियो के जरिए पेश किया गया है. एंड इन बिजोंदर आज है फरियारी श्रीमान ग्लेन गणपत के आज फरियारी हैं. लाती फरमाने फना और रोटी बनाइए, मत हम लोग आला रोटी खाए. यू आर उजाला रेडियो, ये है सुनवालो और उजाला रेडियो के जरिए हम आपको ये नहमा सुनाने गुजार रहे हैं. अच्छा सुन, जब तुके एगो फ्रेंड या फ्रेंडिन हैगा तू माए कदो दे तो वेली यदि पर्सोन फरवेन है दन परफ्यूम किनिए ऑफ की तो सोना के चीज किनिए रिंग ऑफ एन केटिंग ऑफ वेट एक फिल कपड़ा वगैरह वगैरह वगैरह माया ये कान ओक वातम लूं खेवर. And dit is uit de film Satya Pe Satya. Amitabh Bachchan, Satya Pe Satya mein Hema Malini ke khatin watermeloon laya.

अमिताभ बच्चन और आनंद हरदम देवेगा वातमिलून कोनो के कभी ना पार फिल्म देवेगा ऑफ अंदर शॉट दिंग्स ब्लूम भी ना देवेगा आनंद ना देवेगा खानी खानी वातमिलून देवेगा उजाला रेडियो यहाँ सुन वाला उजाला रेडियो का प्रोग्राम में भी तीन बजे से आप सुन लेना बैठ गाना हंगामा पेश किया जा रहा है और भी सुभाष सुगोविंद के जरिए जरूर आप सुन लेना फ्रॉम 3 टू 5 यूर एंड जो लोग सरनाम जिसके न्यूज ना सुन पाए सहेगा आज दिट वोट ऑन सरनाम जिसके न्यूज वोट हर हाउथ

जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे कोई हम सफर, कोई ना कोई तो मिलेगा है? दिल ना चाहिए हारे के। सुनो वालों, इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं। एक बैंड मॉर्गन वे मेट कॉफी चाय मेरा शो मेट आनंद चंदिका सिंह। Ik wens jullie allemaal een hele mooie, fijne zondag. Mooiste zondag bij je. Pyar mahabbat ke saath. En zometeen, subhanallah, gobind. Mooiste hier.

बिनकोर ट्रावर तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं सुन वालों, तो डीजे आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस खाई बिनकोर ट्रावर तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाला है, नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो, ईमेल info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

आपको स्वागत है उजाला रेडियो का प्रोग्राम में गीत और गजल की दुनिया। यहीं से इस चुन के साथ आरंभ किया जा रहा है वही प्रोग्राम जिसमें गीतों और गजलें हम आपको सुनाते हैं, वही प्रोग्राम जिसमें बातें हम कम करते हैं ताकि इत्मीनान से आप बैठ करके और इस प्रोग्राम को सुन सके। तो चलिए पहला फनकार आज का प्रोग्राम में होंगे जगजीत सिंह जी।

शायद मैं जिंदगी के शहर लेके आ गया, कातिल को आज अपने ही घर लेके आ गया। जगजीत सिंह की आवाज में गजल को आप सुने, और अब हिस्सा लेंगे गुलाम अली साहब।

गामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। गुलाम अली साहब की आवाज़ में आप गज़ल को सुने। उजाला रेडियो है ये, गीत और गज़ल की दुनिया।

धड़कने कोई सुन रहा होगा। पंकज उधास जी की आवाज, उजाला रेडियो का प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया।

0: से
1: मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो। मेहंदी हसन की आवाज में आप सुने और इसी फनकार की आवाज में एक और गजल पेश है। उजाला रेडियो है ये, गीत और गजल की दुनिया, प्रोग्राम का नाम।

मैं पुकारा करेंगे मेहदी हसन की आवाज में आप गजल को सुने। और अब एक बार फिर पंकज उदास जी प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे।

अब हमें तुमसे मोहब्बत है, ये छुपाना भी नहीं आता और बताना भी नहीं आता। पंकज उधास जी की आवाज में आप गजल को सुने। उजाला रेडियो का प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया है ये सुनने वालों, जो कि आप के साथ और हजारों लोग सुन रहे हैं।

ही तुझे गुल के रूबरू करते। उस्ताद अमानत अली खान साहब की आवाज़ में आप सुने।

फरीदा खानम से आप सुने कि आज जाने की जिद ना करो। उजाला रेडियो का प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया में अब एक आखिरी गजल

सनो एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना। या नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज में आप सुने। एन एक मुत तुखीफ, ये मुत वेल फन द स्टाइल होल्डन फन नुसरत, अंदर्स नहीं अंदर्स फिंच इट खवोन नीत मोई। मार अगला जो हम आपको, अगली गजल जो आपको हम अब सुनाने को जा रहे हैं मेहदी हसन की आवाज में, तो ये गजल जो है, अगर जो बीते गजल आपको नहीं पसंद आए हुए होंगे तो ये गजल जो है तो जरूर पसंद आएगी आपको, सुन लेना।

रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गये, रफ्ता रफ्ता मेहंदी हसन से आप सुने। उजाला रेडियो, गीत और गजल की दुनिया आपकी खातिर।

तुम चले जाओगे तो सोचेंगे कि हमने क्या खोया और क्या पाया। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह, हाँ, इन दोनों से आप गीत को सुने। और अब अगली गजल जो है अशोक खोसला की आवाज में पेश है। एक बार फिर शुरू करता हूँ। हाँ, पेश है।

तुम इतनी जवां हो, तुम्हें प्यार करने के जी चाहता है। अशोक खोसला की आवाज में गीत को आप अभी सुने। उजाला रेडियो है ये सुनने वालों, और पेश है प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया।

मिटा ना सकोगे मुझे तुम नजर से गिरा रहे है। आप इस गीत को गजल को सुने मेहंदी हसन की आवाज में, और हम आपको एक राय दिए थे, याद है? अगर इस प्रोग्राम से और ज्यादा लुफ्त आप उठाना चाहें तो घर के चिराग जो है कम कर दीजिए, रेडियो की आवाज और जोर कीजिए, आंखें बंद करके फिर सुनिए।

अपने जवां दिल के धड़कनों को गिन के बता कि दिल में प्यार है कि नहीं। आप सुने जगजीत सिंह से, हाँ जगजीत सिंह से, झुकी झुकी सी नजर है। अच्छा लगता है अगर ऐसा हो तो आप एक ईमेल भेज सकते हो info@ujala.nl हमारे पास। अगर ना अच्छा लगता हो तो भी, हाँ तो भी ईमेल आप भेज सकते हो।

अब एक तू ही धनवान है गोरी और बाकी सब कंगाल। पंकज उदास की आवाज में आप गजल को सुने उजाला रेडियो पर, गीत और गजल की दुनिया हमारे साथ आपकी खातिर।

कागज की कश्ती और वो बारिश का पानी। जगजीत सिंह, हाँ जगजीत सिंह की आवाज में आप सुने। और इस गीत और गजल के प्रोग्राम में अब हिस्सा लेंगे गुलाम अली साहब।

प्रोग्राम का इस हिस्सा में आखिरी गजल को आप सुन रहे हैं। बहुत जल्दी हम फिर आपसे मिलेंगे ऐसा ही प्रोग्राम को लेकर के। हमारा इंतजार कर लेना जरूर।

0: रे।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

बाबू जान रेडियो, वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन। वीर बेटा उजाला रेडियो, आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है। चेक फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन ऑफ उजाला बिंद नाउ, उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में, काबल के जरिए ऑनलाइन, उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो दे अबे प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारों ओर। जहां पर भी आ जाइए हमें साथ मिले जाइए, उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है। काम में लाइए उजाला रेडियो, उजाला रेडियो आपके साथ।